0: वाईफाई 6 सहित को सुपर फास्ट इंटरनेट र आईपीटीवी अब क्लासिक टेक में आज ही जड़ान गर्नुहोस् कल गर्नुहोस् 9709184147 शर्तहरू लागू हुने छन्
1: सामाजिक रूपांतरण का लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क
2: सयों रेडियो हजारों रेडियो कर्मी र करोड़ों नेपाली को माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क आई एम